है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है, नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुठता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें। फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है।

प्राण में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तद भस्म तद धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तद भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से छू ले, या
उसको परम पद प्राप्त हो।

ये भगवान की भगवत प्रेममय वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले तो उस जीव को मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार संयम वातावरण ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी, कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहिं, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना अब जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यम पाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज सौभाग्य न होता, कहां मैं उल्टागामी अपवित्र
और कहा भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन भोग भोगों की क्रियाएं नाना प्रकार का छल कपट तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद। क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी अब नान से जितनी श्वास है अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा फिर वही, जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नए आज्ञा के विपरीत कदम नहीं। अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुजधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए। अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अब व्यर्थ कालत्वम कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजे ते चतुर नर, बेईमानी करना छल कपट करना इंद्रियों की गुलामी करना ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन। एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया।
भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई। क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना, ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना जामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख है महतारी, आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरी तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सत्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, आहा मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। ये कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में ना परिचय होगा ना प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करे हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा कोई भी कर्म दल

का की जरूरत है ना तैरने की जरूरत है। राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा, आराम से चलो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा, एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में, कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है, कुछ उसको इन सब विषयों को ना पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परीक्षित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, छोटा ना समझो नाम को। इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मारे घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तो कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, ये नाम ही
समस्त पाप

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सबके साथ होते नहीं है
1: जी।
0: और इसका बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं कि पहले के समय में जब हम होते थे तो टेलीफोन्स होते थे, तो जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मैंने यहाँ तक कि अगर अपने पास फ़ोन नहीं है तो हम दूसरों से भी कनेक्टेड रहते थे, पड़ोसियों से भी कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके घर में शायद फ़ोन है और हमारे पास आना है तो उनसे कनेक्ट रहते थे। आज की डेट में क्या हो गया, आज घर में चार मेंबर हैं, चारों अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। तो आज जब एक परिवार के चार सदस्य ही आपस में बैठ के अकेले हैं, तो आप कितनी भी भीड़ में आप चले जाएं, पहले हम ट्रेन का सफ़र करते थे, मुझे याद आता है जब हम बचपन में जाया करते थे ट्रेन से, तो वहाँ पर क्योंकि फ़ोन तो होते नहीं थे, तो ट्रेन के सफ़र के दौरान ऐसा आपस में रिलेशन बन जाता था कि लास्ट तक जाते जाते लगता था कि फैमिली दूर हो रही है। और आज के टाइम में पड़ोसी भी क्या है ये पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी दुनिया एक डिब्बे में सीमित कर दी है। इसीलिए आज हम सबके बीच में भी रहते हुए हम अकेले हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं, हम उनसे शेयरिंग कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, और समय आने पर वो हमारे नज़दीक नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज हम अकेले हो गए हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा
1: ना। खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, this is unreal man, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार। 89.6
3: रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: भेजे पलक।
1: कभी कभी ना सबके बीच होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस होती है। शोभा जी, इसी को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों के बीच रहकर भी हम अंदर से अकेला क्यों फील करते हैं?
2: ऐसा इसलिए होता है कि हम सब लोगों के बीच में तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में जो थॉट्स का जो तूफान चल रहा होता है उसमें हम उलझे हुए होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उसका हम कहीं से सोल्यूशन नहीं पाते हैं। लोगों के पास बैठते हैं तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। तो उनके बीच रहकर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे मन में तो वही सब बातें चल रही होती हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में रह के भी अकेले अपने आप को महसूस करते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लीजिए पलक।
1: हम दूसरों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कनेक्ट होना भी भूल जाते हैं? ज्योति जी, क्या खुद से कनेक्शन कम होना भी लोनलीनेस की एक वजह हो सकती है?
2: अगर हम पहली सिचुएशन लेके आके कोई मेरे नजदीक नहीं है अपना, उससे भी हमें लोनलीनेस फील होता है, लेकिन वो इतनी देर तक का नहीं होता है, क्योंकि आजकल गैजेट इतने हो गए हैं कि दूर व्यक्ति भी दूर नहीं लगता है। लेकिन जो असली लोनलीनेस की बात है वो है हमारे अंदर का खालीपन। हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तलाश हम अपने अंदर ना करके हम बाहर घूम रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुशी शायद मेटलिस्टिक दुनिया में मिलेगी, और उन्हीं के अंदर ही हम अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं, और इसी वजह से आज वो चीज़ें तो हम कहें कि कुछ समय के लिए हैं, जिसको अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो खत्म होने वाली चीज़ें, विनाशी चीज़ें हैं, उनके पीछे हम जा रहे हैं। लेकिन असली खुशी हमारी कहाँ है? क्या हम असली चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या मेरी खुशी की कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह ही कोई जो कहे आधार हो सकता है? उसका बेस ही हमने जब ऐसा लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझसे मीठा बोला तो मैं खुश हूँ, किसी ने मेरी पसंद की चीज़ बनाई है तो ही मैं खुश हूँ, अगर नहीं है तो मेरा मूड ऑफ है। तो ये जब हमारी चीज़ें विनाशी चीज़ों पर हम रहते हैं और अंदर से अपने आप को जानते ही नहीं है कि मेरी खुशी की वजह क्या है, हम कहाँ ढूंढे, तभी जाकर के वो लोनलीनेस, उसी को ही खालीपन, एक्चुअल में लोनलीनेस वही है जो अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, अंदर से हमने अपने आप को किसी भी चीज़ से भरा नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ों से हम भरपूर हैं। तो अपने अंदर भरे सुख को, शांति को, और भरपूरता है, भरने की जरूरत नहीं है, भरपूरता है, बस उसकी तरफ नजर करनी है।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लोनली फील करना और अकेले होना शायद दोनों एक बात नहीं है। शोभा जी, अगर कोई अंदर से लोनली फील कर रहा हो तो रियल कनेक्शंस और इनर पीस वापस कैसे आ सकती है?
1: देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है अकेलापन और दूसरा होता है एकांत। आज के समय में हम अकेले तो हो गए हैं, अकेले कमरे में भी बैठते हैं, अकेले कहीं भी अपने आप को रखते हैं, लेकिन अकेले होते भी हमारे मन में बहुत सारे विचार या बहुत सारी बातें, और नहीं तो आजकल मोबाइल हम सबके हाथों में हो गया है, जिससे हम अकेले होते भी अकेले नहीं होते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें एकांत में जाने की। एकांत का मतलब होता है एक के अंत में, अर्थात हम खुद अंदर अपने भीतर उतरें, अपने अंदर की जो कमी या कमजोरी है उसके बारे में हम खुद ही अपने आप को चेक करें। जब हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो हम अपनी कमियों को भी समझ पाते हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी हम देख पाते हैं, और फिर हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर एक पीस जिसकी हम ज़रूरत महसूस करते हैं, एक एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर धीरे धीरे आती है। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है एकांत की, अकेलेपन की नहीं, एकांत की।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बीके सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति।
0: दोस्तों, कभी कभी ना हमें ज्यादा लोग नहीं, बस एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है, और सबसे जरूरी कनेक्शन खुद के साथ होता है। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए नजरिया में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग एजी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे फरीदाबाद वालों? और देखो यार, हालचाल पूछने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त आरजी अंजलि। और आप सुन रहे हैं मुझे अंजलि ऑन एयर पर रेडियो महारानी 89.6 एफएम से, जहाँ हर रोज सुबह 7 से 11 होती हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आती हूँ और बहुत सारी बातें करूंगी आपके साथ। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? सुबह वाली चाय। तो सुबह वाली चाय की पहले से प्ले लीजिए। तो आज बातें थोड़ी चटपटी होने वाली है, लेकिन चटपटी बातों के साथ साथ और क्या होने वाला है? वेदर का अपडेट मिलने वाला है, फरीदाबाद की लोकल खबरें आप तक पहुँचने वाली है, साथ ही बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है सब कुछ आप तक लेकर आऊंगी। खुद को साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, फरीदाबाद की पहली भी पूछने वाली हूँ, आपकी दिमाग की बत्ती भी जलाने वाली हूँ। तो बस बहुत सारी बातें हैं, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा डोज आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यारा सा ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, देखिए भाई, बातें बहुत सारी होती रहेंगी और बहुत सारे गाने भी हैं जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के बिजनेस मंत्रा के बारे में। डेली यहाँ पर आती हूँ, कोई ना कोई बिजनेस मंत्रा लेकर आती हूँ जो आपको हेल्प करने वाला है आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। क्योंकि यार, अगर 9 to 5 की बात करूँ ना, तो 9 to 5 हमें देखता है फिक्स्ड सैलरी, जो हमारे ना अगर ट्रिप के लिए तो बच नहीं पाती। तो जिसकी वजह से ना कई लोग बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर मेरे जैसे ट्रिप पगलू। तो देखिए, आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का बिजनेस मंत्रा। और ये मंत्रा ना खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आती है, और खास उन लोगों के लिए भी है जिन्हें टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस मंत्रा लेकर आई हूँ अंजलि, जिसमें दोनों का कनेक्शन ही सीधा टेक्नोलॉजी से। तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन डिजिटल हेल्पर की। तो देखिए, हाउस हेल्पर्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब मार्केट में आ गया सीनियर सिटीजन डिजिटल हेल्पर। यानी कि आप अपने एरिया के जितने भी सारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए डिजिटल हेल्प सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको इस सर्विसेज में देना क्या है, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना आना चाहिए, बिल पेमेंट समझनी आनी चाहिए, और साथ ही एक और चीज जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है स्मार्टफोन्स की सेटिंग, UPI यूज करने का तरीका, ऑनलाइन फॉर्म भरना या फिर वीडियो कॉल सेटअप करना। दैट्स इट, बस यही सारी चीजें हैं जो आपको एक सीनियर सिटीजन को सिखानी है। और इसके लिए ना आपको किसी बहुत बड़े दुकान की जरूरत है, ना बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको बस जरूरत है एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज की। सो भाई देखिए, आज डिजिटल सर्विस इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि हर किसी को ना आनी ही चाहिए। यहाँ पर हम जितने यंगस्टर्स है या फिर जो हमारे पेरेंट्स वाली कैटेगरी है ना, वो तो इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे दादा दादी, हमारी नाना नानी वाली कैटेगरी है ना, उनका हाथ बहुत ज्यादा तंग है। और उनमें गलती भी नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने टाइम पर ये सारी चीजें की ही नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी। यही रीजन है कि वो बहुत जल्दी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। सो देखिए, आज का बिजनेस मंत्रा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है, चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं और ये अपना पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। सो माय डियर लिसनर्स, एक बार जरूर सोचिएगा इस मंत्रा के बारे में और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: समाज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।
3: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल, आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कम्प्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।

तो आज की इंटरेस्टिंग अपडेट ना उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में ना हर वक्त ये गाना बजता है, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। और वो लोग जा चुके हैं बाहर देश, यानी कि खासकर जो लोग अभी लंदन पहुंच चुके हैं ना और इंडिया को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, खासकर मिस करते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार वैली गंगा आरती। तो भाई देखिए अपना आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ गया, और गुड न्यूज ये है कि वाराणसी और हरिद्वार वैली यहाँ तक कि ऋषिकेश घाट की गंगा आरती ना अब आपको लंदन के थीम्स रिवर के किनारे नजर आने वाली है। 13 सितंबर को लंदन के ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज ग्रीनविच में ट्रेडिशनल गंगा आरती ऑर्गेनाइज की जाएगी शाम 4 बजे। और इतना ही नहीं, गंगा आरती के साथ वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं इंडियन फूड, म्यूजिक, डांस और कम्युनिटी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। साथ ही गंगा आरती आप फिटनेस कर सकते हो 7:15 पर रात को। और इसी के साथ जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है, ये इवेंट किसी एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है, हर फेथ और हर बैकग्राउंड के लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं इस आरती को। तो देखा अधीना कितनी शानदार बात जो मैंने आज आप तक पहुंचाई है। तो फिर से गा दीजिए आई लव माय इंडिया, इंडिया वाला कल्चर ना आपको अब हर कहीं नजर आएगा बिकॉज इतना खास जो है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

कुछ लोग क्रिकेट पगलू होते हैं और कुछ लोग होते हैं विराट पगलू। तो भाई आज मैं बात करने वाली हूँ विराट पगलू फैंस के लिए। सो देखिए, आपने हमेशा देखा होगा विराट को 18 नंबर की जर्सी पहने हुए। तो आपके लिए बता दूं कि ये सिर्फ उनके लिए 18 नंबर नहीं बल्कि एक इमोशन है। 18 अगस्त 2008 को विराट ने

और देखिए कोइंसिडेंस, 18 अगस्त 2026 को ही विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 18 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो नंबर 18 एक जैसी नंबर से शुरू हुआ है, मेमोरीज से जुड़ा और आज विराट कोहली की आइडेंटिटी बन चुका है। सो जब भी किंग कोहली को याद किया जाता है ना, नंबर 18 हमेशा अपने आप ही फ्रंट फुट पर आ जाता है। सो देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मैं आप तक पहुंच जाती हूँ और साथ ही बजाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने। तो भाई अब वक्त हो गया है गाने सुनने का, मिलते हैं ना इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Basler. And that bebop culture runs through the blood. Anjali, on air. Anjali,
1: on air. Anjali. हेलो हेलो जी, तो देखिए बहुत सारी बातें कर रही हूँ आपके साथ और अब वक्त हो गया है उस साइबर स्कैम का पर्दाफाश करने का जो इन दोनों मार्केट में बहुत ही ज्यादा नया है। क्योंकि मैंने अक्सर आपको बात ही बताती हूँ, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता दिया, किसी UPI फ्रॉड के बारे में बता दिया, लेकिन जो ये स्कैम है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्कैम आपको ये ट्रस्ट दिलाता है कि आपकी जॉब या फिर आपकी एक इंटर्नशिप लग चुकी है, वो भी कहाँ पर, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, यानी कि आर्मी की इंटर्नशिप। और सिर्फ इंटर्नशिप ही नहीं, जहाँ पर आपको लिखा जाता है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा 75,000 रुपए का। देखिए अगर इस तरह की कोई भी जॉब ऑफर या फिर कोई भी इंटर्नशिप ऑफर आपके पास आता है ना, तो प्लीज जरूर एक बार वेरीफाई कीजिए। आज इस स्कैम की मैं बात कर रही हूँ ना, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रिसेंटली एक फेक इंडियन आर्मी इंटर्नशिप ईमेल स्कैम को लेकर वार्निंग दी है। फ्रॉडस्टर ईमेल भेजकर क्लेम कर रहे हैं कि कैंडिडेट आर्मी की इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है और 75,000 स्टाइपेंड मिल रहा है। सो देखिए अगर इस तरह का कोई भी मैसेज आपको आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, पहले तो वेरीफाई करना है, और अगर आपको लगता है ना ये फेक है, किसी तरह का स्कैम है, तो फटाफट जाकर उसकी कंप्लेन कर दीजिए। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी आपको जॉब देने के लिए पहले ही आपसे पैसे मांगता है ना, तो वो ऑब्वियसली यार फेक है, क्योंकि कोई भी आपको जॉब देने से पहले पैसे क्यों मांगेगा। तो ये इतना सा कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा। स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

हाँ जी, तो चलिए फिर फरीदाबाद से निकलकर एक दूसरे कोने में चलते हैं, यानी कि दूसरी दुनिया में चलते हैं। दुनिया दूसरी नहीं है, देश दूसरा है। और ना आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी ये कहने वाले हैं इस चीज का भी कंपटीशन होना था। तो भाई देखिए, तो भाई कैलिफोर्निया में ऑर्गेनाइज किया गया था 15th एनुअल वर्ल्ड अगलिएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट, और यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट जीता भी गया है। तो भाई ये जीता है 6 साल की पग जिनी लू ने। तो देखिए भाई, जिनी लू बनी है यहाँ की विनर, और जिनकी ओनर है ना मिखेल ग्रेजी, उनको प्राइज मिला है $5,000 का। तो देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई कंपटीशन भी हो सकता है, और अगर कंपटीशन हुआ है तो प्राइज भी मिल सकता है। लेकिन आपको पता है स्टोरी का क्यूट पार्ट क्या था? इस स्टोरी का क्यूट पार्ट ये था, जो कंपटीशन है सिर्फ लुक्स का मजाक बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसका फोकस था जितने भी डॉग्स है उनकी यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी और रेस्क्यू पेट्स को अडॉप्ट करने की अवेयरनेस पर। सो यहाँ इन सारी क्वालिटीज को देख कर जिनी लू जो है वो जीत गई और अपने मालिक को ना अच्छा खासा प्राइज भी दिलवा दिया। सो ये स्टोरी ना हम एक चीज भी बताती है, ये स्टोरी ये हमें बताती है कि खूबसूरती देखने के लिए ना आपको उन आंखों की जरूरत होती है जो एक्चुअल में हर किसी को खूबसूरत महसूस कराती है। सो सोच के देखिए, अगर हम हर किसी में खूबसूरती ढूंढेंगे ना तो सारी चीज अपने आप सुंदर हो जाती है, तो कुछ भी अगली नहीं बचता है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

तो चलिए फिर फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की ना बात ही अलग है भाई। बिहार में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो फनी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सो मैं लेकर आ गई हूँ सुशा स्यापा, और आज का स्यापा देखकर ना आप भी यही बोलेंगे कि वाह क्या किस्मत है ना, किस्मत हो तो इस चोर जैसी। दरअसल हुआ क्या, सोशल मीडिया पर ना इन दोनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी करने गया एक इंसान, लेकिन वहां ना हॉस्पिटैलिटी लेकर आ गया। बिहार से एक ऐसा वीडियो आया है जहां ना एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ा गया पहले, लेकिन गाँव वालों ने ना उसकी पिटाई नहीं की, बल्कि उसकी पिटाई करने के बजाय ना उसे पहले बिठा कर ना वहां पर खाना खिलाया, और फिर जाकर कहीं उससे पूछताछ की कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप इस गाँव में चोरी करने के लिए आ गए। तो भाई देखो, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है ना, इंटरनेट पर लोगों ने इस मोमेंट को बहुत शेयर किया है और बहुत सारे रिएक्शंस भी दिए हैं। रिएक्शन देते हुए ना लोगों ने ये भी कहा, अतिथि देवो भवा। और ये तो अतिथि देवो भवा का ना नेक्स्ट लेवल था। सो किसी ने यहाँ भी ये भी बोला है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, और लेकिन काम दूजा यहाँ पर तब भी नहीं हुआ, पहले पेट पूजा कराई गई और फिर बहुत ही प्यार से इन्हें जो है छोड़ दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जोक्स अपनी जगह, लेकिन अगर आप किसी गलत काम को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये स्टोरी जरूर याद रखिएगा, किसी को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सबक हमेशा वॉयलेंस से हो। आप अपनी बातों से भी किसी को ये बता सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। और इसी के साथ ही तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

जब से हम सबके लाइफ में सोशल मीडिया है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो भाई देखिए व्हाट्सएप पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना किसी को कितना इजी हो गया ना। सबसे पहले उसकी फोटो खींचनी है, सेंड करना है, डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका पैन, आधार या फिर आपके बैंक की कोई स्टेटमेंट है तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है? नहीं सोचा ना। और अक्सर ये सारी चीजें हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर देते हैं। तो देखिए आज का साइबर अलर्ट आपके लिए यही एक अपडेट लेकर आया है। कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट अगर किसी एजेंट या फिर एम्प्लॉय के पर्सनल फोन पर चले गए, डिलीट कभी नहीं होते हैं। उनकी कॉपीज फोन पर, गैलरी पर या फिर आपके क्लाउड बैकअप में हमेशा रह सकती है। इसलिए KYC के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अथॉरिटीज सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम को ही प्रेफरेंस दें हमेशा। कभी भी किसी को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। और अगर मैं बात करूँ ना आधार की, तो भाई आधार की तरफ से तो ये एडवाइजरी भी जारी की गई है, आधार को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो मास्क आधार जरूर बनवाए, ऑप्शन में रखिए। बिकॉज मास्क में होता क्या है, आपके जो 8 डिजिट है वो हमेशा हाइड रहते हैं और जो लास्ट के 4 डिजिट है सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। सो इससे जो फ्रॉड का चांस है ना वो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोलता है कि अपना आधार और पैन भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो पता है ना आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और इसी के साथ ये था आज का साइबर मंत्रा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

तो चलिए फिर अब वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। जैसे कि पहले ही कहा था कि वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, तो बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, जो है फरीदाबाद की पहेली। तो आज मैं एक पहेली लेकर आ गई हूँ। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं, शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और वीकेंड्स पर मेरी खूबसूरती देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कभी मुझे फरीदाबाद की शान कहा जाता है और जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो नेचर के करीब पहुंच जाते हैं। अब फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ, और बताने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है। जाना है आपको रेडियो रानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर अपना जवाब बताइएगा और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानता है। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक दिस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

पहले सिर्फ ब्रेकअप से डर लगता था, फिर धीरे धीरे शादी का टाइम सामने आया तो डाइवोर्स से डर लगने लगा। लेकिन अब ना डाइवोर्स के साथ एक और चीज आ गया मार्केट में, वो है फूड डाइवोर्स। जिन लोगों ने नहीं सुना है ना फूड डाइवोर्स के बारे में, सो वेलकम। तो भाई देखिए, डिड यू नो लेकर आ गई, और आज का डिड यू नो ना वाकई ब्रेन रोट करने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ फूड डाइवोर्स के बारे में। सो जो लोग भी अभी रिलेशनशिप में है ना, जो भी सिर्फ डाइवोर्स से डर रहे थे, वेलकम ब्रो, अब आप फूड डाइवोर्स से भी डरने वाले हैं। तो देखिए भाई, फूड डाइवोर्स का मतलब एक्चुअली डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह के ट्रेंड है जहाँ कपल्स अपनी फूड चॉइसेस सेपरेट रखते हैं, यानी कि अपनी अलग ग्रोसरी, अलग मील्स और कभी कभी अलग कुकिंग रूटीन भी। तो देखिए, ये ना काइंड ऑफ डाइवोर्स जैसा ही लगा मुझे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस फूड डाइवोर्स, बिकॉज यार अगर आप अलग अलग अपनी चीजें करेंगे ना, तो हो सकता है कहीं आपके रिलेशनशिप में ना वो गैप आना शुरू हो जाए। हो सकता है अगर आप अलग खाना बना रहे हैं तो अलग खा भी रहे हैं, बिकॉज एक दूसरे की चॉइसेस अलग हैं, और जिसकी वजह से ना प्यार कहीं कम हो सकता है। सो भाई, पहले अगर मैं फूड डाइवोर्स की बात करूँ ना, तो इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। हो सकता है एक पार्टनर हेल्दी डाइट प्रेफर करता हो, दूसरा पार्टनर बहुत ज्यादा जंक फूड प्रेफर करता हो, और एक पार्टनर का ऑफिस स्केड्यूल अलग हो और एक पार्टनर की टाइमिंग्स अलग हो। सो भाई, किसी को कैलोरीज चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पर है सिंपल सा फंडा, तुम अपना खाना पकाओ, मैं अपना खाना पकाऊंगी, तुम अपना खाना खाओ, मैं अपना खाना खाऊंगी। तो भाई देखिए, अब तक अगर कोई रिश्ता बचाना होता था ना, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती थी। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। अगर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है अपने पार्टनर की, तो आज ही उन्हें फूड डाइवोर्स दे दीजिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

हाँ जी, तो चलिए डू यू नो से सीधा चलते हैं डिड यू नो पर। और डिड यू नो पर जाने से पहले ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रात को सपने देखते हैं लेकिन सुबह उठकर ना वो सपने ब्लर हो जाते हैं। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, कभी कभी ना मुझे सपनों का पूरा प्लॉट याद रहता है लेकिन मैं कैरेक्टर्स इधर उधर कर देती हूँ। तो मेरी तरह ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रात को हसीन सपना तो देखते हैं लेकिन जब भी सुबह आंखें खुलती है ना तो ऐसे लगता है कि कुछ तो था जो अब पता नहीं कहाँ गए। तो भाई देखिए, अब इसके पीछे भी एक साइंस है। यहाँ पर साइंस अपनी गुगली फेंक कर कहता है कि जब भी आप सपने देखते हो, स्पेशली जब भी आप रेम स्लीप में होते हो, रेम स्लीप में जुड़ा हुआ कोई भी सपना आपके ब्रेन प्रोसेसर तक पहुँचता ही नहीं है क्योंकि उस वक्त होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर हमेशा लो एक्टिविटी में। और यही रीजन है कि हमें अपने सपनों की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक याद ही नहीं रहती क्योंकि हमारी मेमोरी में वो स्ट्रांगली फीड ही नहीं होती। तो देखिए, आप जब भी सपने देखे और अपने सपने भूल जाना तो अपने आप को ना प्रेशराइज मत कीजिएगा कि क्या सपना था, बस ये सोचेगा ओ मैं रेम स्लीप में था, और बस फिर से ना वो सपना दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। और पता है यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात भी है, और इंटरेस्टिंग बात ये है जब भी आप सपने देखते हैं ना तो तुरंत उठने के बाद ना कुछ भी काम मत कीजिए, उस सपने को याद करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो सपने आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। और अगर इसके अलावा आपने फोन इस्तेमाल कर लिया, आपने किसी से गुड मॉर्निंग कर दिया ना, तो आपका सपना होने लगता है धीरे धीरे फिर। तो भाई अगली बार जब भी आप कभी सपना देखे हैं तो सबसे पहले सपने को चेज कीजिए, फोन को नहीं। मैं तो ना सपने खुद बना भी लेती हूँ। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करती हूँ। गया तो गया सपना, फिर से बना लेंगे, अपना ही तो है। वाह, सपना अपना ही तो है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो आपका है, और मिलते हैं कुछ ही देर में।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: प्यार करते हो मुझसे? 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत।
1: अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे?
0: तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं?
1: तुम क्या चाहते हो?
2: तुझ पे ही ऐतबार है, तू ही मेरा राजदार है।
0: प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे।

0: देवेश।
1: वो निखिल भागा जा रहा है और तू यहाँ बैठा है।
2: आप शांति से बैठ जाइए ना, वो घूम फिर के इसी मंडप में आ जाएगा। और वैसे भी इस बला से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, बैठ जाइए।
3: By the way, he is joining the IPS.
2: अभी नहीं, शादी के

0: जा रहे हो?
1: मन चला मन चला मन चला मन चला
2: फिलहाल तो फंसा हूँ।

ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं, बॉडी में ठंडे ठंडे पानी के फुहारे फूट रहे हैं, साइमल्टेनियसली गरम गरम के फूट रहे हैं। दिस टाइम इट्स रेस टू द पार एंड देन दे गो टू इंफिनिटी।

हेलो हेलो जी, तो आ गई मैं फिर से लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube से अर्निंग के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो भाई देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अपडेट ना आपका दिल तोड़ने वाली है आज, तो अपने दिल को रखिएगा थाम कर, बिकॉज YouTube ने अनाउंस कर दिया है फ्रॉम 1 February 2027 से। सो भाई जितने भी नए क्रिएटर्स है ना, उनके लिए एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के लिए एंट्री क्राइटेरिया टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अभी का क्राइटेरिया भी जानते हैं। और अभी का एड रेवेन्यू क्राइटेरिया कहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। तो भाई जो ये न्यू रूल्स आए हैं, ये अपने टारगेट को ना डबल करके आए, यानी कि अब आपको चाहिए 8000 वॉच आवर्स, 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज बस। मुश्किल है आई नो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज नहीं तो कभी तो सही। तो देखिए, शुरुआत तो आपको करनी है, और इसी के साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ चेंजेस न्यू क्रिएटर्स के लिए हुए हैं जिनका अकाउंट बनेगा न्यू, और जितने भी पुराने क्रिएटर्स है ना, उनके लिए पुराने रूल्स ही चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हुआ है भेदभाव और ये पार्शियलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ एक शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिएगा, कंसिस्टेंट कॉन्टेंट और लॉयल ऑडियंस जरूर बनाएगा, और फिर देखिएगा एक दिन आपके वॉच आवर्स, आपके जितना भी क्राइटेरिया ही कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं अपने मूड को थोड़ा सा लाइट, और मूड को लाइट करने के लिए ना बजा देती हूँ एक शानदार सा गाना। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ ना थोड़ी देर में।

तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: हेलो हेलो जी, फिर से लौट आई हूँ मैं और अब बात ही नहीं करने वाली है। अब मैं ना पहेली का जवाब जानने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक पहेली पूछी थी और पहेली थी फरीदाबाद की ऐसी कौन सी जगह है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो अब वक्त हो गया है हमारे फरीदाबाद की पहेली का जवाब जानने का, लेकिन उससे पहले ना मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे सभी लिसनर्स का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन जो जवाब सबसे पहले आया, बात करते हैं उनकी। चलिए पहले सुनते हैं कि इस पहेली का आखिर जवाब क्या है।
1: हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम पलक है। अभी तुमने जो पहेली पूछी थी वो तो फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। वहां तो मैं ना अपने बचपन से जाती आ रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ ना अलग ही वाइब है उस जगह की। तो यार वो जगह है फरीदाबाद की बड़कल झील। थैंक यू।
0: थैंक यू पलक, बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हैं। और जैसे कि आपने बताया ना कि आपका बचपन बीता है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बचपन यहाँ पर बिताया है ना, ऐसे ही पूरी जिंदगी आप इस फरीदाबाद की जगह से जुड़े रहे और साथ ही एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ मी टाइम यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका आंसर एकदम सही था। ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने आज अपना आंसर मिस कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, कल फिर से लौटूंगे एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

चलिए भाई, फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी है। लेकिन आपको पता है, टाइम ना सब कुछ हील कर देता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखेगा 4 हफ्तों के बाद आपकी डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेना है, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है, आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है। साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा, क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ, अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी कर ली और ये बताने आ गई हूँ कि फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से टाटा बाय बाय कहने का, यानी कि अंजलि ऑन एयर थी, अब ऑफ एयर होने वाली है, यानी कि मैं ऑफ एयर बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो जान लेते कि आज टिफिन में क्या है। देखिए, आज मेरा तो पहला ही काम है, जब मैं ऑफिस आती हूँ ना तो अपने सबसे पहले अपने जितने भी एम्प्लॉयज है ना, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आज टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। और जब मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया तो मैं उनका लंच ब्रेक से पहले ही खा जाती हूँ, जैसे मैं स्कूल में क्या करती थी। खैर देखिए, अगर मैं आज अपने टिफिन की बात करूँ तो आज मेरे टिफिन में आया वेज पुलाव और रायता, और घर का खाना, सिंपल खाना। और क्या ही चाहिए, और क्यों जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, मेरे लिए खाना मेरा कंफर्ट फूड है, और जब भी खाना खाती हूँ ना तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। खैर, मैंने तो बता दिया है कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। आप मुझे जरूर बताइए कि आज आपकी टिफिन में क्या है, और जिनका टिफिन घर से नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, ऑफिस की कैंटीन से खा लेना। तो भाई एंजॉय कीजिए प्यास और ट्रैक। आज आई थी बहुत सारी बातें आपके साथ की, कल फिर से आऊंगी तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों आज सिनेमा के गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ, कुछ नई कहानियों के बारे में जो कि सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने को है तैयार, कुछ नई जोड़ियों के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू होंगे, तो किस कहानियों में होगा नए गानों का बहुत अच्छा धमाका। हिंदी पट्टी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री तक के किस्से कहानियां होंगे आज सिनेमा के प्रचार में अंकुश, और कहीं होगा जी प्लेटफॉर्म का धमाका। पंजाबी गानों का तड़का तो कहीं है हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी का धमाका। टीवी स्क्रीन से लेकर सिल्वर स्क्रीन की लेकर के आए हूँ चर्चाएं, लेकिन सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों सिनेमा के गलियारे में अब यहां बात करते हैं हम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल। 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रहे जहां इसको पहले अगस्त में रिलीज किया जाने वाला था लेकिन इसकी डेट को आगे शिफ्ट कर देगा। कहानी है 26/11 के हमले के आरोपी को फांसी दिलाने में भूमिका निभाने वाले वकील साहब जहां की बायोपिक को बनाया जा रहा है। कास्ट में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम के किरदार में होंगे तो साथ ही वामिका गब्बी सिकंदर खे जयदीप अहलावत ललित प्रभाकर जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर अविनाश अरुण इस कहानी को डायरेक्ट करते नजर आएंगे और इंतजार रहेगा जहां इसकी रिलीजिंग के साथ एक लाइन लिखी गई अब होगा जस्ट का प्रहार। देखते हैं क्या धमाल मचाएगी ये कहानी रहेगा इंतजार बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और

बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: मुझको सता।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड ओनली विद आरजे मॉर्निंग
5: फिल्मी फ्लेवर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्म नहीं फ्लेवर। यहाँ दोस्तों सिनेमा के गलियारे में हम बात करते हैं गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्य पहली बार टीवी पर साथ नजर आवे। एकता कपूर के नए रोमांटिक फैमिली ड्रामा के लिए चर्चा हो रही है। जहां बात की जाए फॉर्मेज की तो रोमांटिक फैमिली ड्रामा होगा प्यार रिश्ते और फैमिली के बीच की चुनौतियां। बात करूं तो इसको अक्टूबर 2026 में लॉन्च करने का टारगेट किया गया है और कहा जा रहा है इसको क्योंकि सास भी कभी बहू थी चू का स्लॉट ले सकता है ये नया टीवी शो। देखते हैं गौरव और श्रद्धा की जोड़ी को कितना पसंद किया जाएगा। पहली बार ऑन स्क्रीन पेअप होने वाला है और ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐसे अभी बाकी और फाइनल डेट की रहेगा इंतजार। एक नई जुड़ी सिल्वर स्क्रीन है लेकिन टीवी स्क्रीन पर उतरने का बाकी चर्चा होती रहेगी उस पर एक और ट्रैक।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशन लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

0: ना चले आए, ठंड पे गई है, कार चलिए
1: नहीं पहले झप्पी।
2: चांदनी ने पुन्ने

टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्म में फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं विजन क्वेस्ट के बारे में, जहाँ पहला ट्रेलर डी 2026 रिलीज हो गया, जहाँ सीरीज की बात करें 14 अक्टूबर 2026 को प्रीमियर की जाने वाली है। विजन की पहचान का सवाल, व्हाइट विजन अपने अतीत यादों को समझाने की कोशिश करता, क्या वांडा के साथ बेटे टॉमी असली था या नहीं। अल्ट्रा की वापसी है, जेम्स पैडर फिर अल्ट्रॉन के रूप में दिखेगा, वहीं एआई दुनिया से जार्विस फ्राइडे जैसे किरदारों की झलक भी है। स्पीड के रूप में यहाँ पे विजन की खोज पर केंद्र पूरी कहानी की अगर बात की जाए, जहाँ स्टार्स में पॉल ब्यूटी विजन के किरदार में दिखने वाले हैं। आज एपिसोड्स की इस कहानी को टेरी मटलस लेकर के आ रहे हैं। इंतजार रहेगा 14 अक्टूबर का इसकी प्रीमियर होने का, बाकी ऐसी भी चर्चा होते रहेंगी। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: हूँ मैं तेरा झूम।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हट के।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात करते हैं सिनेमा के कलंजर में राजीव कपूर साहब की, जहां उनके बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर ने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जर्नी बनाई। राजीव कपूर साहब 1983 में एक फिल्म एक जान है हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म की करी की सबसे बड़ी फिल्म बनी 1985 की राम तेरी गंगा मैली। राजीव कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राजीव ने नरेन शाही का लीड रोल प्ले किया। मंदाकिनी के साथ उनकी पेयरिंग और फिल्म की इमोशनल लव स्टोरी ऑडियंस को काफी पसंद आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सक्सेस रही और राजीव कपूर के करियर की सबसे मेमोरेबल फिल्म के रूप में याद की जाने लगी। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेयर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। हम बात कर रहे हैं आज सनमा के कैलेंडर में राजीव कपूर की। जहां बढ़िया बढ़िया कहानियों की अगर बात करें तो फिल्म मेकिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी अपना टैलेंट दिखाया, चाहे बात हो प्रेम ग्रंथ की जहां डायरेक्ट किया जिसमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित लीड किरदारों में नजर आए। इसके अलावा वो प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे कपूर फैमिली का लेजेंडरी आर के स्टूडियोज की लेगेसी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। राजीव कपूर का फिल्मी करियर भले ही उनके भाई ऋषि जितना लंबा ना रहा, लेकिन राम तेरी गंगा मैली ने उन्हें बॉलीवुड हिस्ट्री में एक खास जगह जरूर दी। कपूर फैमिली के सिनेमैटिक लेगेसी में राजीव का भी अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा। आज जहाँ उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और उनकी जो कहानियाँ चुनिंदा कहानियाँ इसे चुनिंदा किरदार चुनिंदा डायरेक्शन ही सही रही, लेकिन उनकी वो कहानियाँ आज भी दिलों में जिंदा हैं और जगह बनाए हुए। ऐसे सिनेमा के गलियारे से और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूँगा, लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूँगा ढेरों बातें। तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके और ये खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

0: उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े

0: लवर्स।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? लंच ब्रेक हो गया है ना, और मुझे आपसे ये पूछना है कि आज आपके डब्बे में क्या है, क्योंकि लंच ब्रेक शुरू होने से पहले ही ना मेरा मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने आज तोरी की सब्जी दी है। हाँ मुझे पता है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी सब्जी होती है, ग्रीन सब्जी है, खानी चाहिए, ये होता है वो होता है, बट प्लीज यार नहीं खानी मुझे तोरी। अब मेरा मूड खराब है तो मैंने सोचा मैं आपसे बात ही कर लूं, इसलिए मैं आ गई आपसे बात करने के लिए। हेलो, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी। अगले दो घंटे में थोड़ी मेरी बकबक होगी, थोड़ी आपकी कंपनी मेरे साथ होगी, और हम बात करेंगे कुछ फनी, कुछ रिलेटेबल, कुछ ऐसा जो सुन के आप बोलो कि अरे यार ये तो लिटरली मेरी लाइफ है। और हाँ, अगर मेरी तरह आपका भी मूड खराब है ना, तो उसको 100% ठीक करने की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि चैलेंज लेना मेरी बुरी आदत है और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। चलिए पहले गाना हो जाए और गाने के बाद खोलते हैं मेरी जेन ज़ी डिक्शनरी, देखते हैं आज मेरी जनरेशन ने क्या नया बना दिया है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: पर्स।
1: अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को आपका कोई जेंजी फ्रेंड आपसे बोले कि आई एम अ बेबी, तो प्लीज उसको प्यार से ना गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेंजी डिक्शनरी में आई एम अ बेबी का मतलब बेबी होना नहीं है, मतलब ये आई एम योर बेबी वाला रोमांटिक सीन भी नहीं है। यहाँ आई एम अ बेबी का सिंपल सा ट्रांसलेशन है कि मुझसे नहीं होगा यार, मुझे नहीं आता, मुझ पे गुस्सा मत करना प्लीज। अच्छा इमेजिन करो कि ऑफिस में बॉस बोले कि ये प्रेजेंटेशन मुझे आज ही चाहिए, और सामने से रिप्लाई आई कि सर आई एम अ बेबी, मुझसे नहीं होगा, तो सर को ना तुरंत समझ जाना है कि एम्प्लॉय बेबी नहीं है, काम के मामले में वो बेबी है। मतलब जेंजी ने ना मुझे नहीं आता बोलने को भी एक क्यूट सा शॉर्टकट बना दिया, और ऑनेस्टली मैं खुद जेंजी हूँ तो मैं इसको जज नहीं करूंगी, मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ आपको कि हम लोग थोड़े अजीब हैं, हमें समझना इतना इजी नहीं है। और आपको भी कोई जेंजी वर्ड या स्लैंग पता है जो मुझे डिकोड करना चाहिए, तो 9654896896 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बता देना। नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9654896896। चलिए अभी गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं ट्रेंडिंग मीम्स में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पोल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पोल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: लवर्स।
1: यार एक मिनट, सितंबर आने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई बस 4 महीने। मतलब अभी तो हमने जनवरी में रेजोल्यूशन बनाया था कि इस साल अपना कमबैक होगा, नया रूटीन बनाएंगे, जिम जाएंगे, पैसे सेव करेंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे, सबको दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। और अब कैलेंडर सामने खड़ा है और बोल रहा है कि भाई जो तूने कमबैक की बात की थी, क्या हुआ उस कमबैक का, कहाँ है वो कमबैक। और सच बताऊं, मुझे लगता है ना कि हम सबके अंदर एक जनवरी वाला वर्जन होता है जो बहुत मोटिवेटेड होता है, और साथ ही साथ एक दिसंबर वाला वर्जन होता है जो बस कैलेंडर देख के बोलता है कि चलो कोई नहीं यार, अभी अगला साल है, अगले साल से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सुनो, 4 महीने बचे हैं, पूरा साल खत्म नहीं हुआ है। अगर कुछ पेंडिंग है तो क्या हो गया, अभी भी टाइम है अपना कमबैक करने का, क्योंकि अपना टाइम आएगा। लेकिन इस बार बस बोलना मत, करके दिखा देना। चलिए अभी गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं वही जो आसपास भटकते रहते हैं, चार लोग। देखते हैं आज इसमें नया क्या है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

आन होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: बर्ड्स।
1: मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि ये लोग क्या कहेंगे वाले लोग हैं, कौन कहाँ मिलते हैं, इनका कोई एड्रेस है, नाम तो बताओ इनका। क्योंकि बचपन से ना बस एक ही वार्निंग मिलती आई है कि ऐसा मत करना वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो लोग हमारे डिसीजंस पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं उन्हें हमारी लाइफ के बारे में पता भी है कुछ। उन्हें नहीं पता कि हम किस चीज को लेकर टेंशन में हैं, किस रात नींद नहीं आई हमें, किस डिसीजंस के लिए हमने कितना सोचा, फिर भी हम उनके ओपिनियन के डर से करियर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने चॉइसेस तक कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और सबसे फनी बात ये है, अगर हम उनकी बात मान भी लेंगे ना तो भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है ना कहना। तो फिर उनकी अप्रूवल के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, उनके मुंह पे बोल दो यार कि आपका काम तो बस बोलना है, मैं तो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊंगी ना। बस जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे को म्यूट कर दिया ना, उस दिन अपनी आवाज पहली बार क्लियरली सुनाई देगी। तो आज ना बस मेरे कहने पे प्लीज ये काम करना कि लोगों को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दो, देखना लाइफ कितनी इजी लगने लगेगी। चलो अभी गाना हो जाए और गाने के बाद देखते हैं आज बॉलीवुड में क्या नया हंगामा हुआ है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

मैंने कल ही एक मूवी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई और वो ये है कि कुछ लोग ना स्क्रीन पर सिर्फ आते ही नहीं है बल्कि स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अक्षय खन्ना की, जिनका महाकाली में लुक देखने के बाद ना सोशल मीडिया पर ऑरा फार्मिंग वाली बात चल रही है। मतलब इतना पावरफुल करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो इस मूवी में। और मैं आपको बता देती हूँ कि महाकाली एक अपकमिंग तेलुगु माइथोलॉजिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट है और ये वही यूनिवर्स है जहाँ से हनुमान आई थी। और इस फिल्म में भूमिका शेट्टी महाकाली के रोल में नजर आएंगी, अक्षय खन्ना शुक्राचार्य का करेक्टर प्ले कर रहे हैं और रोहित सरफ भी की रोल में है। टीजर में देवास और असुरास का कंफ्लिक्ट, माइथोलॉजी, पावर और गॉड वर्सेस इविल का बड़ा सेटअप देखने को मिल रहा है। ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में आने वाली है। टीजर में अक्षय खन्ना को देखकर आधी यूथ का रिएक्शन ये हो गया है कि क्या ऑरा फार्मिंग वाइब दे रहे हैं ये। तो अगर आपका माइथोलॉजी, फैंटेसी और लार्जर देन लाइफ एक्शन पसंद है तो इस मूवी को अपनी वॉच लिस्ट में नोट कर लेना। और अब वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद मिलूंगी स्टाइल स्टूडियो में कुछ ऐसे फैशन टिप्स के साथ जो शॉपिंग के वक्त काम आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अच्छा, हम गर्ल्स को ना वाइड लेग जीन्स बहुत पसंद होती है, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है, जीन्स वाइड है, टॉप भी वाइड है, और फिर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार जैसा लुक मुझे चाहिए था वैसा नहीं आया। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली वाइड लेग जीन्स ऑलरेडी लोअर हाफ में ना वॉल्यूम क्रिएट करती है, तो ऊपर थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप वाइड जीन्स पहनो तो ओवर साइज या बहुत लूज टॉप पहनने की जगह फिटेड टॉप, क्रॉप टॉप, वन शोल्डर या ऑफ शोल्डर टॉप ट्राई करना। ये वेस्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं और ओवरऑल आउटफिट क्लीनर और मोर बैलेंस्ड लगता है। और इसी के साथ एक बात याद रखना कि स्टाइलिश दिखने के लिए ना वार्डरोब भरना जरूरी नहीं है। जो भी कपड़े आपके पास है उसको सही तरीके से स्टाइल करना जरूरी है। तो अगली बार जीन्स के साथ टॉप चूज करते वक्त बस एक सेकंड रुकना, क्या ये आउटफिट मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं। चलिए फैशन का फंडा तो समझ आ गया, अब थोड़ा फैशन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद की गलियों में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।
1: अखियां सोनी तेरी मेरे वाल हुन तक दी नहीं,

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।
1: इंडिया कल सुन पे मेरी
2: बेबे लड्डू
3: बी तू भी मैं चलिया अपने कबूतर दाने पा
2: तू कबूतरी देखता रही तू कबूतरी ना देखी
4: बेबे
1: मेरे नाल ही टीचर करी।

अच्छा, दर्शन करने के लिए ये नहीं कि हम किसी दूर जगह ही जाएं। हो सकता है आपके अपने शहर में ही कोई ऐसी जगह हो जो आपने अभी तक देखी ही ना हो। आज की जगह भी कुछ ऐसी ही है, श्री कृष्ण नवग्रह टेम्पल, जो कि सेक्टर 31 फरीदाबाद में है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे ना, यहाँ का एटमॉस्फेयर और आर्किटेक्चर आपको साउथ इंडिया का किसी ट्रेडिशनल टेम्पल वाली फील दे सकता है, क्योंकि ये टेम्पल भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और नाम में ही नवग्रह है, तो आपको यहाँ नवग्रह के भी दर्शन मिलेंगे। तो अगली बार फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान बने और मूड हो थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करने का, तो सेक्टर 31 की इस जगह को भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि कभी कभी ना अपने शहर की हिडन जगह डिस्कवर करना भी मिनी ट्रेवल जैसा ही फील होता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग ना सक्सेसफुल होने से पहले ही ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सक्सेस उनके पॉकेट में रखी हो, और सच में शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने गोल्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम अक्सर ना पहले प्रूफ मांगते हैं खुद से कि पता नहीं ये होगा या नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर आप हर वक्त खुद को ये बोलते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो स्टार्ट करने की हिम्मत भी कहां से आएगी। क्योंकि माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि बस आंखें बंद करो और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। माइंडसेट का मतलब है कि अपने आप को केपेबल समझना, अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना और फिर उसके लिए एक्शन लेना। क्योंकि ड्रीम्स पहले दिमाग में बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो आपकी रियल लाइफ में प्रोसीड होती हैं। तो आज का रिमाइंडर सिंपल सा है, अपने फ्यूचर वर्जन पे इतना तो बिलीव करो कि उसके लिए आज एक स्टेप लेने की हिम्मत आ जाए आप में। अभी मुझे जाना पड़ेगा, द हैप्पी आवर्स का आज का टाइम यहीं शटर डाउन करते हैं। मैं हूँ आरजे पलक, कल फिर मिलूंगी इसी वक्त इसी जगह, क्योंकि आप जानते हैं ना, अभी जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी। तब तक ये गाना आपके नाम और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी। बाय बाय, टेक केयर।
1: What's up, dog?
2: Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it?
1: Watch out, man. Watch out, Dell G coming, man.
2: Oh, word. They say he the GOAT. He all the way tapped in.
1: Yeah, dog. He killing the game.
2: Oh, Dell G, watch out.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने फोन को चार्जिंग पर लगाया और पूरा एक घंटे के बाद आप जब फोन उठाने गए तो आपको पता चला कि आपके चार्जर का बटन ऑफ था? मेरे साथ काफी बार हुआ है। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी पर। मंगलवार की शाम है, गौरव मेरा नाम है एंड तबीयत खराब हो रही है, मेरी भी हो रही है और बहुत सारे लोगों की और भी हो रही है। एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है, इसमें फ्लू फैल रहा है, वायरल फैल रहा है, न जाने क्या क्या फैल रहा है, करेंगे सबके बारे में बात। बस ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ। अभी फिलहाल सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था और वो सवाल सिंपल सा था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फोन चार्जिंग पर लगाया हो और आप बहुत देर बाद जब फोन को वापस निकालने आए चार्जर से तो पता लगा कि चार्जर का बटन स्विच ऑफ ही रह गया था। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। गौरव इन द हाउस एंड आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? कचरे में एक्सपायर्ड चॉकलेट पड़ी हुई थी वहाँ, बहुत सारी मतलब भंडार पड़ा हुआ था। फरीदाबाद का ये सीन नहीं है, बट फरीदाबाद में भी होता तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर सकता था ये चीज़ जो कानपुर में हुई है। अब क्या हुआ है ये सब कुछ मैं बताऊंगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। 5 से 9 तक आप सभी के साथ यहीं पर हूँ। तो आप लोग फरीदाबाद से रिलेटेड कोई बातें करना चाहते हो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। फरीदाबाद से रिलेटेड कोई अपडेट मुझे बताना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि फ़ोन नहीं उठाता। अरे एक्चुअली फ़ोन ना साइलेंट पर होता है तो पता नहीं चलता फ़ोन का, बट हाँ मैसेज का ज़रूर पता लग जाता है। और फिर उसके साथ साथ रेडियो महारानी का नंबर भी दे ही देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आप लोग ट्रैफिक में फंसे हों कहीं पर। और आज सुबह का मौसम देखा था, सुबह 7 बजे क्या अमेजिंग अंधेरा हो गया था। मुझे लगा फिर से शाम हो गई है क्योंकि मैं उस टाइम उठा ही था और मुझे लगा मैं एक दिन सो गया हूँ क्या पूरा। चलिए मैं भाई आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, सिंपल सा नंबर है 9654, बस ये 4 डिजिट याद कर लो आप लोग, 9654896896। सिंपल सा नंबर है कि नहीं है तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए क्योंकि फरीदाबाद में दिल्ली NCR में फैल रहा है डेंगू, तो डेंगू के साथ साथ फैल रहा है फ्लू। क्या है उस फ्लू का नाम करेंगे उसके बारे में और भी बात।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
0: Ladies and gentlemen, you are not

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इमेजिन करो आपकी साइड से एक पिकअप ट्रक जा रहा है और उसने एकदम से बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे रोड के साइड में फेंक दिए। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, क्या करोगे उसके बाद। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं कौन, हाँ बता दिया, रेडियो का गौरव। एंड जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ ना, वो सच्चाई है कि आप लोग, मान लो आप सड़क से जा रहे हैं और आपकी साइड से एक पिकअप ट्रक जाता है और वो बहुत आगे निकल गया, फिर उसने जाके वहाँ पर गाड़ी रोकी, आपको कुछ सस्पिशियस लगा, फिर उसने पिकअप ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोला और उसने बहुत बड़े बड़े डिब्बे निकाल के फेंके। एक बहुत ही बड़े ब्रांड की चॉकलेट का नाम लिखा था उसमें, टॉफ़ीज बहुत सारी आपको दिखी। जब उसने डब्बे फेंके तो देखा कि सड़क पर डब्बे गिर रहे हैं, उसमें टॉफ़ी और चॉकलेट्स निकल रही है। और जैसे ही आपने देखा, उसके बाद बहुत सारे बाइक वाले इकट्ठे हो गए और साइकिल वाले, सब ने भीड़ लगा दी और सब लोग उसे उठा के ले जाने लगे। एक्चुअली मैं ये सारी की सारी थी एक्सपायर्ड चॉकलेट। और ये जो मैं पूरा किस्सा बता रहा हूँ ना आप लोगों को इमेजिन करने के लिए, ये हुआ है कानपुर में। एक्सपायर्ड चॉकलेट और एक्सपायर्ड टॉफ़ीज को मतलब कलेक्ट करने के लिए लूट मच गई, लोग बैग में भर भर कर लेके गए हैं। और ये हुआ है कानपुर में, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ एक डंपिंग साइट बनाई हुई है। अब उस डंपिंग साइट में एक्सपायर्ड चॉकलेट टॉफ़ियाँ सब कुछ फेंकी गई, फिर उसके बाद लोगों ने वो भी बटोरनी शुरू कर दी। क्या करेंगे इसका, मतलब क्या करें कीजिएगा इस धनराशि का। मैं धनराशि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हाँ लंगर वगैरह में मिल जाता है, आपको भंडारे में खाना मिल सकता है, बट ऐसे रोड के किनारे कोई अगर चीज़ें फेंक के जा रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये सवाल हम लोगों को अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि कल को अगर हमारे सामने ऐसा कुछ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। खैर ये वीडियो जब आई तो लोग भी पूरा बातें कर रहे, लोग कह रहे हैं इंडियंस हैं कभी नहीं सुधरेंगे, और बहुत सारे लोग बस लूट के ले जा रहे थे। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था इस चीज़ को देख के कि एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और फिर उसके बाद शायद ये लोग चॉकलेट नहीं लेके जाते। तो इस पर आप लोगों की भी कोई ना कोई राय होगी, दे सकते हैं आप लोग अपनी राय। नंबर है मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा सा लाउड कर देते हैं क्योंकि एक गाना है ही कुछ अच्छा सा।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जो कल हुआ था ना उसका सारा aftermath आज सुबह के अखबार में देखने को मिला है। मतलब कि कल जो बढ़िया वाली बारिश हुई थी ना दिन में, उसकी वजह से जो जो चीज़ें हुई फरीदाबाद में, वो सारी की सारी चीज़ें आज सुबह सुबह अखबार में देखने को मिल गई। और जैसे ही मैंने वो सब चीज़ें देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। रेडियो का गौरव इन दिस हाउस, इन द हाउस और इन दिस हाउस जो भी है, रेडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, एंड जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो कल बारिश की, कल बारिश हुई, फिर उसके बाद हम सबको पता है बारिश होती है तो फिर क्या होता है, वाटर लॉगिंग, जो कि एक आम समस्या है फरीदाबाद की। और वाटर लॉगिंग हुई तो हुई, उसमें सीवर सगर वाले जो टैंकर्स होते हैं वो भी लगा दिए गए, डिप्लॉय कर दिए गए जहाँ पर पानी निकासी होती है वहाँ पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर साल इवन ये जो मथुरा हाईवे है, ये 6 लेन का हाईवे जब बना उसके बाद से ही बहुत सारी चीज़ें करी गई, साइड में नालियाँ बनाई गई ताकि पानी जो आएगा वो वहाँ से बह के चले जाएगा, बट उसके अंदर ही खुद मिट्टी जमा हो चुकी है। तो डोंट यू थिंक कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? अगर कोई ऑफिशियल मुझे सुन रहा है और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस। नंबर है जी हमारा 9654896896। और ऐसा क्यों होता है कि हर बार बारिश आती है और हम लोगों को जल भराव देखने को मिलता है? 2-3 रीजंस है। एक है जो हमारी नालियाँ हैं ना, उसमें सबने पन्नियाँ डाल दी है सड़क किनारे। आप लोगों ने भी काफ़ी बार ऐसा होगा कि पीनट्स खाए और गाड़ी से बाहर फेंक दिया पैकेट, चिप्स खाए बाहर से फेंक दिया पैकेट। तो ऐसी हरकतें हम ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग कोई ना सॉल्यूशन दो, क्योंकि जल भराव एक प्रॉब्लम हो चुकी है। कल जैसे दिन भर उमस भरी गर्मी थी, फिर 11-12 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी कल, और 3 बजे तक बारिश चली थी। अच्छा था काफ़ी, मौसम ने थोड़ी सी राहत दी, मतलब बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिली, मगर जैसे ही पानी भरा, वाटर लॉगिंग हुई, जल भराव हुआ, उसने आफत मचा दी। तो फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम भी काफ़ी जगह पर था। तो आप लोग अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं, नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: दीदार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

कल बारिश हुई, आज दिल्ली में बारिश हुई और फरीदाबाद में भी काफी सारे हिस्सों में बारिश हुई थी, और हो सकता है आपके वहां पर अभी भी दो चार छींटे पड़ रहे हो, क्योंकि उससे ज्यादा छींटे तो कहीं पड़ते हैं। और जब छींटे पड़ते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, जल भराव, और जल भराव के बाद मच्छर उसमें अंडे देते हैं। डेंगू फैल रहा है दोस्त, डेंगू फैल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चिकनगुनिया के भी मच्छर घूम रहे हैं मार्केट में। मार्केट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जल भराव जहां पर होगा, साफ पानी जहां पर जमा होगा, वहां पर मच्छर अंडे दे देंगे, और ये एडीज ग्रुप के मच्छर हैं। हर साल गायब हो जाते, फिर आ कहां से जाते मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कोई ना इसे स्टोर कर लेता है वो बचपनों वाली बातें नहीं होती, कोई स्टोर कर लेता है इसको डब्बे के अंदर, और फिर इस टाइम बारिश के आसपास इन्हें छोड़ देते हैं आसमान में। अब पता नहीं कहां से आते, खैर इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाते। बट एक बात बोलना चाहूंगा, घर के आसपास अगर कहीं पर भी आप पानी जमा हुआ देखते हैं तो 9 दिन के अंदर पूरा एक लार्वा मच्छर में तब्दील हो जाता है, बन जाता है मच्छर। तो 9 दिन तक तो पानी को बिल्कुल भी जमा मत होने दीजिए, तुरंत जहां पर पानी देखे वहीं से निकाल दो उस पानी को, और हो सके तो पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल छिड़क दो, कुछ भी कर दो, तो उससे मच्छर वहां पर अंडे नहीं दे पाएंगे। एंड इसके साथ साथ डेंगू फैल रहा है, और डेंगू के लक्षण आप सभी को पता है, तेज बुखार, बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, बदन टूटता है बहुत ज्यादा तेजी से, और फिर उसके साथ साथ और भी दिक्कतें होती हैं, कमजोरी आ जाती है पूरे शरीर में। और बताऊं आपको, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। लोग पपीते के पत्ते का रस पीते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। एक सिंपल इलाज है जो कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं, वो यही है कि लिक्विड जितना हो सके इनटेक उतना कीजिए, खिचड़ी खाइए, और पीने के लिए नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा कीजिए, और अगर आपको हल्का फुल्का भी बुखार लगता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और अभी आप सभी के लिए चला रहा हूं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर किशोर कुमार की आवाज में।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कुछ हटके।
1: सिनेमा का कैप्सूल।
2: हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल, इमरान हाशमी का शिवम
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था डेंगू की बीमारी के बारे में, और डेंगू के लक्षण होते हैं तेज सर दर्द, बुखार, बहुत ज्यादा तेज बुखार, 104 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 102 से 104 के आसपास, और सेम लक्षण होते हैं एक और बीमारी के। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आपको पता है अभी आरजे गौरव आप सभी के साथ जो चीज शेयर करने जा रहा है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और डिफरेंट इस तरह से है कि देखो वायरल फैल रहा है। वायरल के क्या लक्षण होते हैं? थोड़ा बहुत बुखार आएगा, ठंड लगेगी आप लोगों को, इसके अलावा जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, और गले में खराश और हरारत जैसे कहते हैं हम लोग, बदन टूटता है, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है। तो यही सारे लक्षण है एक और चीज़ के जिसे कहते हैं H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू। बहुत तेज़ी से फैल रहा है दिल्ली में, और दिल्ली में फैल रहा मतलब दिल्ली NCR एक साथ जोड़ लो, क्योंकि दिल्ली में हर किसी का आना जाना ज़रूर है। फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली अप डाउन डेली बेसिस पे करते हैं, या फिर डेली भी ना सही, हर दूसरे दिन दिल्ली ज़रूर जाते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये लक्षण पहचानने हैं। बेसिकली ये लक्षण सिंपल से सिम्टम्स जो हमारे कॉमन कोल्ड के होते हैं या फिर हम बोले वायरल फीवर के होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही हैं। जैसे बुखार आ सकता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाएगा और कंपन महसूस होगी, ठंड लगने लग जाएगी आपको इतनी भरी गर्मी में भी, खांसी होगी, सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी हो सकती है, गले में दर्द, खराश हो सकता है, और साथ ही साथ पूरे शरीर या फिर आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द या भारीपन, और उसके साथ साथ कमजोरी या फिर थकावट महसूस होगी। ये है स्वाइन फ्लू के लक्षण। अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है ना, तो उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट करवाना है। और सबसे चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने मुंह को ढक के रखना है, और उसके साथ साथ बार बार हाथ धोते रहिए। और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान के अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं, तो उससे उचित दूरी बनाए रखें। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, खूब सारा पानी पीजिए। आपके लिए गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 9.6 पर।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

क्या आप लोगों को कभी सपने में शेर दिखाए, टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ। और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर डरने की जरूरत नहीं है, मतलब सपनों को डीकोड करने का वक्त हो चुका है और सपनों को रोज डीकोड करते हैं हम लोग। मैं अभी एक सवाल पूछ रहा था कि आपने सपने में कभी टाइगर देखा है? टाइगर, बाघ, बाघ, बिल्कुल उसे बाघ कहते हैं। एंड पता है, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, फिर मैंने जब रिसर्च करी, मैंने जोड़ा घटाया गुणा करके, तो मुझे पता लगा नॉर्मल टाइगर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो हिम्मत है और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। आप किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। और अगर टाइगर आपका पीछा कर रहा है तो समझ लो इसका मतलब हो सकता है रियल लाइफ में किसी डर से गुजर रहे हो आप लोग, या फिर कोई जिम्मेदारी है, या फिर कोई प्रॉब्लम से आप दूर भाग रहे हो। टाइगर ने अगर अटैक कर दिया सपने में तो इसका मतलब यही है कि आपको आने वाली चैलेंजेस या फिर दुश्मनों से सावधान रहने का इशारा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे सपने बहुत कुछ बताते हैं। और अगर टाइगर को मार रहे हो आप, तो फिर इसका मतलब है आप अपनी सभी परेशानी और दुश्मनों पर जीत पालेंगे। मैंने तो टाइगर के बच्चे देखे थे, उसका कुछ समझ नहीं आया मुझे। खैर, शांत टाइगर देखते हो अगर आप, तो इसका मतलब ये है कि आप करियर में तरक्की होने वाली और लीडरशिप मिलने का संकेत है। क्या हो सकता है, मैंने तो टाइगर के बच्चे देखे, टाइगर भी नहीं देखा था मुझे, तीन बच्चे थे टाइगर के जो मुझे सपने में दिखे थे। खैर, अभी ये सारी बातें होती रहेंगी। और अगर आपको भी कोई सपना डीकोड करवाना है तो हमें भी जरूर भेजिए मैसेज व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। व्हाट्सएप पर कैसे भेज सकते हैं, नंबर है हमारा 9654896896। और अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रेडियो महारानी के नाम से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: क्या आपको मालूम है इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहा है अभी?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: अभी का मतलब था कि आजकल चल रहा है और परसों तक चलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि परसों तक चल भी पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका की हालत कुछ तो खराब हो चुकी है। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रेडियो गौरव, आप सभी के साथ शो चल रहा है HR 896। अभी देखो इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया ने 503 पर डिक्लेयर कर दिया था 9 विकेट खोते हुए। और फिर उसके बाद तारीफ तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत श्रीलंका की भी, क्योंकि श्रीलंका के एक बैट्समैन है जिनका नाम है पी सूर्यवंदना। अब इस बंदे ने 80 रन बनाए 133 बॉल के लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग करी। और फिर उसके बाद एक और बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, उसका नाम है दिनुषा, इसने भी बहुत अच्छे रन बनाए। बट यहाँ पर इंडियन बॉलर्स की तारीफ ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंडिया का एक बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा, एंड सच में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं ये और प्रसिद्ध होते जा रहे हैं सबके बीच में। 3 विकेट लिए 13 ओवर डाल के। और वहीं पर जो नया मानव सूथर नाम का खिलाड़ी है, बॉलर है, उसने भी 2 विकेट ली, रविंद्र जडेजा 1 और मोहम्मद सिराज 1। तो ऑल टोटल टीम इंडिया अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कल ही मैच खत्म हो जाएगा। वैसे क्यों लगता है कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अफसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
1: अच्छा,
0: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
0: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे, बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

आपको पता है इंडिया में एक चीज अभी बहुत तेजी से ट्रेंड हो रही है और वो है अक्षय खन्ना। महाकाली, महाकाली क्या है, महाकाली मूवी है जो कि आने वाली है, उसका टीजर लॉन्च हो गया है और बहुत ही अमेजिंग है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ हैं। हनुमान मूवी के बाद आएगी महाकाली और महाकाली बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है क्योंकि इसका जो टीजर है ना वही देख के मजा आ गया। और 8 जनवरी 2027 को ये फिल्म थिएटर्स पर रिलीज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें शुक्राचार्य को भी दिखाया जा रहा है। शुक्राचार्य सोचो किसने करा होगा, जस्ट इमेजिन। अच्छा मैंने बता ही दिया था, अक्षय खन्ना ने, अक्षय खन्ना हर जगह छाए हुए हैं भाई ये बंदा। और इसमें रोहित सरफ भी है, राकेश बेदी भी है, रजत कपूर भी है, एंड इनके साथ साथ भूमि शेट्टी रोल निभा रही है महाकाली का। और शुक्राचार्य साथ में श्रिया रेड्डी, ये देखते हैं अब मूवी कैसी होने वाली, क्योंकि टीजर देख के तो मज़ा ही आ गया। कहाँ औरंगजेब, फिर उसके बाद कहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान में रहमान डकैत का किरदार निभाया, फिर उसके बाद इन्होंने अब शुक्राचार्य का किरदार निभाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अमेजिंग सी मूवी आने वाली है। आई विल वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए चलेंगे खूब सारे गाने, उनमें से ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: सारी गल वही।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था महाकाली के बारे में। महाकाली मूवी आने वाली है कब? 8 जनवरी 2027 को। मुझे लगता देखो एवेंजर्स डूम्सडे आएगी ना, उसके बाद महाकाली विल बी द अमेजिंग मूवी, क्योंकि वो मूवी का टीजर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जिसने हनुमान नहीं देखी ना, वो पहले हनुमान देखिए क्योंकि उससे रिलेटेड ही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आज सोचा कि बॉलीवुड के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली जाए। और इस साल 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को बाबा जी का सत्संग था, वहां पर हम लोग गए थे, पंजी में पाव भाजी खाई थी। याद आया किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं दृश्यम मूवी 7 साल पहले आई थी, 8 साल पहले या फिर और भी पुरानी, तो इसकी ना साउथ इंडियन रीमेक भी है। एंड साउथ इंडियन रीमेक नहीं है, एक्चुअली में साउथ इंडियन में पहले बन चुकी थी, फिर उसके बाद हमारी बॉलीवुड ने इसको कॉपी किया और बहुत ही अच्छे से पिरोया है। अजय देवगन की एक्टिंग कमाल की है एंड स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब दृश्यम पार्ट 3 की बारी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं दृश्यम पार्ट 3 का, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, और जिसने दृश्यम 1 और 2 देख ली है वो 3 के लिए तो बिल्कुल ही बैठा होगा। अब जरा एक बात सोचिए कि कितना दिमाग लगा के लिखी गई होगी ये कहानी, जिसने भी लिखी है, लाइक उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा, जस्ट इसके बारे में सोचिए। क्योंकि देखो मैं अगर बैठूं अपने आप से सोचने, मैं सोचता हूं कि चलो एक आदमी होएगा, उसकी चार लोगों की वो फैमिली होएगी, और फिर उसके बाद मतलब उसकी बेटी को वो छेड़ देगा, ऐसे करके पूरी मूवी की कहानी लिखूं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट भी लिख दूं कि भाई कैसे उसने पुलिस स्टेशन के अंदर ही शव को दफना दिया। दृश्यम मूवी में हमने देखा, दृश्यम 2 में कुछ अलग ही हो गया अनएक्सपेक्टेड सा, और अब दृश्यम पार्ट 3 आने वाली है। फिर से वही तब्बू मिलेंगी देखने को, फिर से वही मिलेंगे अजय देवगन, फिर से मिलेंगी हमारी वन एंड ओनली साउथ इंडियन स्टार त्रिशा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मूवी कैसी जाने वाली है। इस साल 2 अक्टूबर को मूवी रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर भी जल्द ही आने वाला है हम सभी के सामने। फिलहाल मैं एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे कहते हैं गाना। एक कब आज डीओ जेम्स की आवाज़ में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपको पता है, मौसम विभाग का कहना है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा तेज वाली बारिश होने वाली है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, आप सभी के साथ बैठा हूं बहुत देर से, 7:20 नहीं, माफ कीजिए, 21 मिनट हो गए, मेरी घड़ी थोड़ी सी ऐसी चलती है। और मौसम विभाग का कहना है कि कल भी बारिश हो सकती है सुबह सुबह।

तो मौसम विभाग बहुत कुछ कहता है, लाइक उन्होंने लास्ट वीक बोला था पूरे हफ्ते बारिश होगी, नहीं हुई ना लास्ट वीक। फिर उसके बाद सैटरडे की पूरे दिन भर हो गई थी, मतलब फ्राइडे की नाइट हो गई थी बेसिकली, फ्राइडे की नाइट बारिश हो गई, सैटरडे को कुछ भी नहीं हुआ, संडे को हल्की फुल्की बौछार दिखी, मंडे को बारिश हुई है यहाँ पे, और अभी मौसम विभाग की माने तो आज रात को तो कोई बारिश नहीं है, बट हाँ कल सुबह सुबह आप लोगों को थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। अब देखो इस बारिश में भीगना है या नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डॉक्टर्स का कहना है कि इस बारिश में बच के रहिए, खासकर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं 65 से ऊपर के उम्र वाले लोग हैं और जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है उन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है इस टाइम पर। इस टाइम पर आप सभी को पता है मानसून में नए नए बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह सब कुछ आते हैं, तो इन सब से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर मौसम विभाग ने तो बोल दिया कि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ कल बारिश होगी और रक्षाबंधन एकदम से आपका बढ़िया वाला जाने वाला है। और हाँ रक्षाबंधन कब है, थर्सडे को है या फ्राइडे को है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्सडे की सुबह से शुरू हो जाएगा फ्राइडे की सुबह तक, बट देखते हैं इस बार सही चीज़ तो आई जाएगी आते आते। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट, इस गाने का नाम डीनो जेम्स की आवाज़ में रेडियो महारानी 89.6 पर।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

तेरी जान। जब तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम से हालत खराब हो जाए और कोई पूछे क्या हाल है, तो मन से आता है हाल तो बुरे हैं बट हम लोग बोल देते हैं एकदम बढ़िया। आरजे गौरव आप सभी के साथ, रेडियो को गौरव कहते हैं उसको। और देखो आप सभी के साथ बैठा हूँ, रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, एंड 89.6 पर शो चल रहा है HR 896। और वक्त हो चुका है क्या हाल है, तबीयत खराब हो जाए तो लोग पूछते हैं क्या हाल है, हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया था पर फिर बॉडी ने बोला आज मेंटेनेंस मोड पे जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। खैर, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बस सैलरी टाइम पे नहीं आई। और इसके अलावा बॉडी घर पे है, इम्यूनिटी छुट्टी पे है और मम्मी का काढ़ा फुल टाइम ड्यूटी पे है। बुखार हो जाता तो ऐसे ही करते ना घर वाले, नई नई चीज़ें, नए नए नुस्खे निकाल के ले आएंगे, फिर डॉक्टर ने जो दवाई दी होगी वो भी खानी पड़ती है। किसी की तबीयत खराब हो ना उससे पूछो क्या हाल है, बोलता तबीयत खराब है। अब समझ आ रहा है कि हेल्दी रहना भी एक फुल टाइम जॉब है। डॉक्टर बोल रहा है कि रेस्ट करो और फोन बोल रहा है एक और रील देख लो, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है ना उसके पास कुछ काम नहीं होता, वो दिन भर रील स्क्रॉल करता है। बुखार में इतनी गर्मी लग रही है कि एसी भी मुझे देख के पसीना पसीना हो रहा है। गर्मी नहीं, माफ कीजिए, ठंड लग रही है, और एसी चालू करते ही डबल ठंड हो जाती है। बट एसी और पंखा ना चालू करो तो फिर गर्मी लगती है। ये तो है बुखार के लक्षण। और इसके बाद खाने का मन नहीं करता, ना उठने का मन करता है, बस मेडिसिन का अलार्म टाइम पे आ रहा है, हाँ बस मेडिसिन खाओ, बैठे रहो। बॉडी का सर्वर डाउन है भाई, डॉक्टर को आईटी सपोर्ट समझ के कॉल करने का मन कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही आधी बीमारी खुद से ही ठीक हो जाती है। होता है ना कि डॉक्टर के पास आ गए अब तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर अगर किसी की तबीयत खराब है उससे पूछ लो क्या हाल है, वो बोलता है तबीयत खराब है, लेकिन ऑफिस को मैसेज करो तो वो पूछते हैं मीटिंग अटेंड कर लोगे, ये काम कर लोगे। भाई बस जिंदा हूँ, कंबल में रैप्ड हूँ और रिकवरी का ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। तो ये तो था आज का क्या हाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर बात करें हम लोग और बताएं कि क्या हाल है, तो नंबर है हमारा एक सिंपल सा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो

0: क्या आपको पता है बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से पिक किए गए हैं, काफी बार धुन कॉपी करी है, काफी बार तो पूरा गाना ही कॉपी कर दिया।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज तो HRA 96 पर आ जाता है
0: रेडियो का गौरव।
1: आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हो आप सब? देखो मैं बात जो कर रहा हूँ ना वो है म्यूजिक डीकोड का वक्त आ चुका है, गाने को डीकोड कर रहे हैं। एंड मैं सोच रहा था कि उन गानों के बारे में बात करते हैं जो साउथ इंडियन मूवी से लिए गए थे। आप लोगों ने सलमान खान की मूवी देखी थी रेडी? बहुत बढ़िया मूवी थी ना वो, पता है वो मूवी भी कॉपी की गई थी। उसमें एक गाना है ढिंका चिका, सुना है ना आप लोगों ने मीका सिंह की आवाज़ में, तो वो गाना भी कॉपी किया गया था। साउथ इंडियन मूवी है एक आर्या 2, उसका गाना कॉपी किया गया था, रिंगा रिंगा ऐसे करके गाना है, उसको ढिंका चिका बना दिया था और नो डाउट गाना अमेजिंग बना था। इसके अलावा राउडी राठौड़ तो हम सभी ने देखी है, आपने भी देखी होगी। राउडी राठौड़ का बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स है ना। अब मेरे को एकदम से डायलॉग याद नहीं आ रहा, बस एक ही चीज़ याद आ रही है जो वो करता है चिंता चिता। खैर चिंता तो चिता तो नहीं, बट हाँ उसमें एक गाना है अरे प्रीतम प्यारे, देखा है ना आप लोगों, सुना है ना आप लोगों ने, तो वो गाना कॉपी किया गया है साउथ इंडियन ट्यून से। और साउथ इंडियन मूवी में भी, मतलब साउथ इंडियन सिनेमा में भी राउडी राठौड़ बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसके 2-3 पार्ट्स बने हुए हैं। और मतलब तेलुगु में अलग बनी है, कन्नड़ में अलग बनी है, एंड डिफरेंट केरला की लैंग्वेज मलयालम में अलग बनी हुई है। तो ये सारी की सारी मूवीज़ मैंने ना हिंदी डब में देखी है, तो आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। और कैसी मूवी और कौन सी मूवी आपको सबसे अच्छी लगी वो ज़रूर बताइएगा, डोंट एंग्री मी, है ना। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है इसको चला देते हैं, क्योंकि ये गाना कहीं से कॉपी नहीं है, ये है एड शीरन की आवाज़ में सिमेट्री, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज तो H-R-A-96 पर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर

0: जो कल हुआ था ना उसका सारा आफ्टरमैथ आज सुबह के अखबार में देखने को मिला है। मतलब कि कल जो बढ़िया वाली बारिश हुई थी ना दिन में, उसकी वजह से जो जो चीज़ें हुई फरीदाबाद में, वो सारी की सारी चीज़ें आज सुबह सुबह अखबार में देखने को मिल गई। और जैसे ही मैंने वो सब चीज़ें देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव, इन दिस हाउस, इन द हाउस और इन दिस हाउस, जो भी है, रेडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, एंड जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कल बारिश की, कल बारिश हुई, फिर उसके बाद हम सबको पता है बारिश होती है तो फिर क्या होता है, वाटर लॉगिंग, जो कि एक आम समस्या है फरीदाबाद की। और वाटर लॉगिंग हुई तो हुई, उसमें सीवर सगर वाले जो टैंकर्स होते हैं वो भी लगा दिए गए, डिप्लॉय कर दिए गए, जहाँ पर पानी निकासी होती है वहाँ पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर साल इवन ये जो मथुरा हाईवे है, ये 6 लेन का हाईवे जब बना उसके बाद से ही बहुत सारी चीज़ें करी गई, साइड में नालियाँ बनाई गई ताकि पानी जो आएगा वो वहाँ से बह के चला जाएगा, बट उसके अंदर ही खुद मिट्टी जमा हो चुकी है। तो डोंट यू थिंक कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? अगर कोई ऑफिशियल मुझे सुन रहा है और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस। नंबर है जी हमारा 9654896896। और ऐसा क्यों होता है कि हर बार बारिश आती है और हम लोगों को जल भराव देखने को मिलता है? 2-3 रीजंस है। एक है जो हमारी नालियाँ हैं ना, उसमें सबने पन्नियाँ डाल दी है सड़क किनारे। आप लोगों ने भी काफ़ी बार ऐसा होगा कि पीनट्स खाए और गाड़ी से बाहर फेंक दिया पैकेट, चिप्स खाए बाहर से फेंक दिया पैकेट। तो ऐसी हरकतें हम ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग कोई ना सॉल्यूशन दो, क्योंकि जल भराव एक प्रॉब्लम हो चुकी है। कल जैसे दिन भर उमस भरी गर्मी थी, फिर 11-12 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी कल, और 3 बजे तक बारिश चली थी। अच्छा था काफ़ी, मौसम ने थोड़ी सी राहत दी, मतलब बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिली, मगर जैसे ही पानी भरा, वाटर लॉगिंग हुई, जल भराव हुआ, उसने आफत मचा दी। तो फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम भी काफ़ी जगह पर था। तो आप लोग अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं, नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों को कभी सपने में शेर दिखाए, टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ। और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर डरने की जरूरत नहीं है, मतलब सपनों को डीकोड करने का वक्त हो चुका है और सपनों को रोज डीकोड करते हैं हम लोग। मैं अभी एक सवाल पूछ रहा था कि आपने सपने में कभी टाइगर देखा है? टाइगर, बाघ, बाघ, बिल्कुल उसे बाघ कहते हैं। एंड पता है, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, फिर मैंने जब रिसर्च करी, मैंने जोड़ा घटा गुना करके, तो मुझे पता लगा नॉर्मल टाइगर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो हिम्मत है और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, आप किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। और अगर टाइगर आपका पीछा कर रहा है तो समझ लो इसका मतलब हो सकता है रियल लाइफ में किसी डर से गुजर रहे हो आप लोग, या फिर कोई जिम्मेदारी है, या फिर कोई प्रॉब्लम से आप दूर भाग रहे हो। टाइगर ने अगर अटैक कर दिया सपने में तो इसका मतलब यही है कि आपको आने वाली चैलेंजेस या फिर दुश्मनों से सावधान रहने का इशारा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे सपने बहुत कुछ बताते हैं। और अगर टाइगर को मार रहे हो आप तो फिर इसका मतलब है आप अपनी सभी परेशानियों और दुश्मनों पर जीत पालेंगे। मैंने तो टाइगर के बच्चे देखे थे, उसका कुछ समझ नहीं आया मुझे। खैर, शांत टाइगर देखते हो अगर आप तो इसका मतलब ये है कि आप करियर में तरक्की होने वाली और लीडरशिप मिलने का संकेत है। क्या हो सकता है, मैंने तो टाइगर के बच्चे देखे, टाइगर भी नहीं दिखा था मुझे, तीन बच्चे थे टाइगर के जो मुझे सपने में दिखे थे। खैर, अभी ये सारी बातें होती रहेंगी। और अगर आपको भी कोई सपना डीकोड करवाना है तो हमें ज़रूर भेजिए मैसेज व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। व्हाट्सएप पर कैसे भेज सकते हैं, नंबर है हमारा 9654896896। और अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रेडियो महारानी के नाम से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो।
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मेरे उस दोस्त को जरूर ले आए जिम तक जो मेरे साथ गया था मेंबरशिप लेने के टाइम पर। पैसे तो उसने दे दिए बट आ नहीं रहा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। जिम ब्रो है आप सभी के साथ, आरजे गौरव, जिम ब्रो इक्वल है। मैं जिम भी जाता हूं तो जिम ब्रो भी हूं आपका। आपको कोई बेवजह की सलाह नहीं दूंगा बट हाँ, जो भी सलाह दूंगा हमेशा अच्छी ही दूंगा। खैर, अभी पता है क्या मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग वर्कआउट तो कर रहे हैं और वर्कआउट के साथ साथ हम लोग क्या स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेचिंग, प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। इसको लोग कहते हैं, मतलब वर्कआउट से पहले वार्म अप और वर्कआउट के बाद कूल डाउन, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो वार्म अप और कूल डाउन क्यों ज़रूरी है, तो इसको आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। देखो क्या होगा, आप एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते हो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत निकल जाते हैं। नहीं करना वो चीज़। गाड़ी जब स्टार्ट होती ना तो फिर इंजन ऑयल इंजन में घूमना शुरू होता है और फिर उसके बाद फ्यूल पहुंचता है इंजन तक। तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी है, तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, मसल्स को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई लोड आने वाला है। तो वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वार्म अप में ऐसा नहीं कि सिर्फ दो बार हाथ हिला लिया बस हो गया वार्म अप, नहीं नहीं, 5 मिनट निकालिए वार्म अप के लिए। और फिर उसके बाद आप लोग जब वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं तो फिर कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे, वर्कआउट कर लिया चलो जी घर चल रहे हैं, नहीं, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प आने के चांसेस कम हो जाएंगे और मसल इंजरी के भी चांसेस कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हद तक। तो चलिए, ये थे मेरी आज की टिप आप सभी के लिए बीइंग अ जिम ब्रो। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, ब्राउन मंडे, इस गाने का नाम रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी

0: स्वाइन फ्लू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है और इसी के साथ साथ फैल रहा है वायरल फीवर, क्योंकि मौसम बदल रहा है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। रेडियो महारानी 89.6 पर शो चल रहा है HR 896, 8:48:50 मेरी स्टूडियो क्लॉक में, और देख लो 49 भी हो जाएंगे, 50 भी हो जाएंगे, 9 बजने वाले हैं। एंड वक्त हो चुका है किस चीज का, मेरा यहाँ से कट लेने का, मतलब कट लूंगा CUT, हाँ इंग्लिश वाला बोल लो हिंदी वाला बोल लो, वक्त हो चुका है निकलने का। तो मैं जाने से पहले बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, कुछ भी आपको फील होता है बुखार हल्का फुल्का पहले दिन, अगर आप सोचते हैं घर में बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं तो कोशिश कीजिए, बट अगर वो सिम्टम्स सेवियर होते जाते हैं ना, अगर बढ़ते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर पे ज़रूर विजिट कीजिए। और डॉक्टर पे विजिट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि कुछ लोग अपने आप को खुद से ही डॉक्टर समझ बैठते हैं, और आजकल आप सभी को पता है इंडिया जो है ना वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता जा रहा है। खुद से ही कोई भी एंटीबायोटिक उठा के नहीं खानी है कि पिछली बार बीमारी हुई थी तो ये चीज़ खा ली थी ठीक हो गए थे, नहीं करना है ऐसा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसके साथ साथ बॉडी फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगी, यानी कि कोई भी दवाई असर करना बंद कर देगी। तो प्लीज़ अपने आप से अपनी मर्जी से ऐसा मत कीजिए। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केमिस्ट के पास जाके दवाई ले आते हैं, तो प्लीज़ ये भी मत कीजिएगा, क्योंकि देखो केमिस्ट दवाई देने के लिए है, वो प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग एक अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर पर जाइए एंड वहाँ से उनसे एडवाइस लीजिए। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 9, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो अगर दिल्ली जाना हो रहा है आप लोगों का, किसी भी हॉस्पिटल जाना हो रहा है, तो चेहरे पर मास्क ज़रूर लगा के जाइएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि वायरल फैल रहा है तो उससे भी बच के रहिए, गर्म पानी पीते जाइए, पानी खूब सारा पीजिए, और इसी के साथ साथ चाय वाय सब पीजिए। मैं निकलता हूँ यहाँ से, वापस आएगी गीत वे देश को बाजी, हाँ प्यार भरी बातें, प्यार

0: कभी भी तो आप बोलना आपको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं कभी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो एंड वेलकम यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत और रेडियो महारानी 89.6 पर रात के इस खूबसूरत पहर में हम फिर लौट आए हैं उस जगह जहाँ बातें कम होती हैं लेकिन एहसास ज्यादा। और आज के इश्क शायराना में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे शायर की जिनकी शायरी आपके इंस्टाग्राम फीड से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक, रील से लेकर लेट नाइट पोस्ट तक हर जगह दिखाई देती है। जॉन साहब आज के डिजिटल एरा में उन्हें एक तरह से अपना शायर बना लिया है। उनकी लाइन स्क्रीन पर आती हैं, कोई अपना दर्द उनमें ढूंढ लेता है, कोई अपना ब्रेकअप, कोई अपनी अधूरी मोहब्बत। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी शायरी नई नहीं हुई। कभी खतों में जो बातें लिखी थी आज वही दो लाइन किसी की बैक स्क्रीन पर लिखकर कोई रात के 2 बजे पोस्ट कर देता है, लेकिन उस शायरी के पीछे का अकेलापन वही है, वही रात है, वही इंतजार है, वही किसी के चले जाने के बाद कमरे में बची हुई खामोशी है। और शायद इसीलिए जॉन एलिया साहब की शायरी इतनी अपनी लगती है क्योंकि वो इश्क को सिर्फ मिलने की कहानी नहीं बनाते, वो उस हिस्से की भी बात करते हैं जहां इंसान किसी के बिना जी तो रहा होता है लेकिन जीने की हिम्मत और जीने की ताकत दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और उनका ये शेर सुनिए, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। कितनी अजीब बात है ना, हम अपने दर्द को भी नॉर्मलाइज कर लेते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं, बस मूड थोड़ा ऑफ है, जबकि अंदर कहीं ना कहीं कोई कहानी पूरी की पूरी अधूरी पड़ी होती है। शायद यही जॉन एलिया साहब की खूबसूरती है, वो दर्द को ड्रामेटिक नहीं बनाते, बस इतना सच लिख देते हैं कि पढ़ने वाला खुद उसमें अपना चेहरा देख ले। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां रेडियो महारानी 89.6 पर। स्टे ट्यून, अभी वक्त है खूबसूरत गाने का।

वेलकम बैक टू इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी से उनकी प्रेजेंस नहीं जाती है, उनकी आवाज याद नहीं रहती लेकिन उनका बोलने का अंदाज याद रह जाता है। चेहरा चाहे धुंधला पड़ जाए मगर कोई एक छोटी सी बात, कोई एक जगह, कोई एक गाना अचानक उन्हें वापस आपके सामने खड़ा कर देता है। और सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? जब आपको ये समझ नहीं आता कि आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं या उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को जो आपके साथ हुआ करता था। जॉन एलिया साहब लिखते हैं, किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है नहीं तो। बस यही तो बात है, हम कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, शायद करता भी है लेकिन वक्त हर चीज मिटाता नहीं है। कुछ लोगों को हमारी मेमोरी में और गहरा कर देता है और फिर एक दिन हम उनके बिना जीना सीख जाते हैं लेकिन उनके बिना खुश रहना तो शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत में सबसे बड़ा लॉस हमेशा इंसान का जाना नहीं होता, कभी कभी वो उम्मीद का जाना भी होता है। वो उम्मीद की शायद कॉल आएगा, शायद मैसेज आएगा, शायद वो लौट आएगा, शायद इस कहानी का कोई दूसरा एंडिंग होगा। और जब वो शायद भी खत्म हो जाता है ना, तब इंसान को अपने ही दिल के साथ बैठकर समझौता करना पड़ता है। तो अगर आज रात कोई याद आपको थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही है तो उसे भगाइए मत, कुछ यादें जाने के लिए नहीं होती, बस हमारे साथ रहने के लिए होती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

वेलकम बैक टू इश्क बाजियां। रात का ही वक्त ना बड़ा ऑनेस्ट होता है। दिन में हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितने भी लोगों के बीच क्यों ना हो, रात को जब सब आवाजें थोड़ी धीमी पड़ती हैं तब अपने ही थॉट सबसे ज्यादा लाउड हो जाते हैं। कोई पुराना नाम, कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुरानी कॉन्वर्जेशन बिना परमिशन के वापस आ जाती है। हम खुद से कहते हैं अब मुझे उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन दिल बड़ी मासूम चीज है, उसे इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आते ना। तो इसी पर जॉन एलिया साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा ख्याल है वो ख्वाब बेताबीर उसको भुला देने की नियत है, नहीं तो ख्वाब बेताबीर यानी एक ऐसा ख्वाब जिसका पूरा होना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अकेला नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी इंसान को पता होता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, फिर भी वो कहानी का आखिरी पन्ना बंद नहीं करता, क्योंकि कुछ रिश्ते रिलेशनशिप नहीं होते बल्कि मेमोरी बन जाते हैं, और मेमोरी से ना ब्रेकअप नहीं होता। आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, आर्काइव नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उनके बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते, मगर किसी रात अचानक कोई सॉन्ग बजता है और पूरा पास्ट वापस ऑनलाइन आ जाता है। शायद इसीलिए कुछ मोहब्बतें हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आती, वो सिर्फ हमें ये सिखाने आती हैं कि दिल कितना कुछ सह सकता है। तो अगर कोई ख्वाब आज भी आपके पास है जिसे आप जानते हैं कि शायद कभी पूरा नहीं होना, तो उसे भूलना जरूरी नहीं है। कुछ ख्वाब बस ख्वाब बने रहें तो भी खूबसूरत होते हैं, है ना। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, वक्त है गाने का, स्टे ट्यून्ड।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

वेलकम बैक टू इश्क बाजियां। और आज जॉन एलिया साहब की शायरी के बहाने हमने मोहब्बत के उस हिस्से की बात की जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करना चाहते हैं, वो हिस्सा जहां प्यार तो होता है लेकिन साथ नहीं, जहां दिल लगा नहीं पाता, जहां याद पीछा नहीं छोड़ती, जहां इंसान खुद से पूछता रहता है आखिर ऐसा हुआ क्यों। और शायद सबसे खूबसूरत सवाल आखिर में आता है, सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो। क्या खूबसूरत लाइन है ना। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं खोते कि हम कम थे, हम इसलिए खो देते हैं क्योंकि सामने वाले की दुनिया में कोई और वजह, कोई और कहानी, कोई और रास्ता हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दिल हमेशा कंपेयर करता है, उसमें ऐसा क्या था जो मुझमें नहीं था। लेकिन शायद प्यार कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। हर मोहब्बत का मिल जाना जरूरी तो नहीं और हर जुदाई का मतलब ये भी नहीं कि मोहब्बत कम थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं, हम उन्हें भूल नहीं पाते लेकिन एक दिन उनके जाने के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। और शायद वही क्लोजर है, किसी को बुरा कहे बिना, किसी से शिकायत रखे बिना, बस ये मान लेना जो था खूबसूरत था, जो नहीं रहा वो भी अपनी जगह मुकम्मल था। तो आज रात अगर आपके दिल में भी कोई अधूरी कहानी है तो उसे थोड़ा प्यार से याद कीजिए ना। हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं, कुछ कहानियां बस हमें थोड़ा और इंसान बना जाती हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये था हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना इश्क बाजिया में रेडियो महारानी 89.6 पर। स्टे ट्यून, अभी वक्त है खूबसूरत से गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे रेट्रो इश्क लेकर।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहां मैं बात करती हूं उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहां मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहां हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहां इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने

0: में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में, मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज़ में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लव्स कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: रहना, आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना। 89.6
1: रेडियो महारानी।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे, और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जैसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां। गुमसुम गुमसुम गुप।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाह

लगता है उसकी मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत, तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: भगवान से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को,